0: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Rainbow FM 107.5 Musically Yours।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: You are listening to Rainbow FM Kochi 107.5. Musically yours.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: One zero seven point five FM Rainbow.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ രഞ്ജിത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സോങ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ 9 മണി കഴിഞ്ഞ് 28 മിനിറ്റ് 19 സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ്

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: दिस इज रेनबो FM 107.5 म्यूजिकली योर्स।

0: tele-law.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടുക.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए

0: विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: You are listening to Rainbow FM 107.5, musically yours.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: You are listening to Akashvani Radio.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
0: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ആകാശവാണി ഫ്രം റെയിൻബോ 107.5 മ്യൂസിക്കലി യേഴ്സ്.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Rainbow FM presents Double Barrel. Two songs back to back. Double Barrel.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आकाशवाणी FM रेनबो 107.5 म्यूजिकली योर्स।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। Rainbow FM presents

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ। क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए। बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह।
2: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है। जब चेहरे की चमक बता रही है
2: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
2: बिल्कुल।
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा।
2: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे।
1: अच्छा।
2: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह।
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप,

0: तो अगर आपको वहाँ मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि
1: हाँ
0: वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल
0: इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप
1: हाँ
0: पैदल चलेंगे उतना अच्छा है
1: वो
0: हम
1: अच्छी
0: लिए
1: बात
0: भी।
1: है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: जी
1: ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है, ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए।
0: बिल्कुल
1: और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो
0: बहुत
1: तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद भी कहा, तो
0: जी
1: तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी
0: बिल्कुल
1: तुम,
0: बिल्कुल बहुत
1: है ना,
0: अच्छा लगता है, आप
1: और
0: जब कहीं भी आते हो
1: आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा
0: बिल्कुल
1: को
0: बहुत
1: करने के बाद, इतनी जगह घूम के
0: जी,
1: आई हो
0: इतने लोगों को
1: तो।
0: देखा, सब कुछ
1: हाँ
0: किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देख के बहुत अच्छा
1: नई
0: लगा
1: संस्कृतियों का अनुभव
0: बहुत
1: होता है हमें, नए
0: जी।
1: अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
0: तरह तरह
1: हैं।
0: के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते
1: अरे क्या
0: हैं
1: बात
0: जो
1: है।
0: मेरा बहुत फेवरेट चीज है,
1: हाँ
0: मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहां बनेगी,
1: उसमें
0: लेकिन
1: फर्क होता है
0: स्वाद
1: स्वाद
0: बिल्कुल फर्क
1: का,
0: होता है
1: हाँ, क्योंकि पानी का, बनाने वाले का
0: जी
1: तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं
0: हाँ
1: बदलता है ना।
0: बिल्कुल बहुत
1: तो
0: अच्छा लगता
1: यात्रा
0: है,
1: करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा
0: बहुत
1: मानती
0: सुकून
1: हूँ,
0: मिला।
1: और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है तो आप फील गुड महसूस कर रही
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं
1: हैं
0: अपने अंदर
1: तो
0: तो
1: चलिए सखी
0: जी
1: सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है,
0: जी
1: तो अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है।
1: अरे काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजें। ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि भी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तनचोई साड़ी।
0: क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तनचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखे,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया। ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल। तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, हमें खिलाएंगे भी, ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: अरे भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें, हाँ, शुद्ध जो शहद है वो मिलता है,
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने लिखा, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं और प्रचुर मात्रा

0: फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने ही कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है।
1: जी
0: और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं, वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं,
1: जी
0: जैसा अभी
1: बिल्कुल
0: तुमने शुरू में बताया भी था।
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में बपतिस्मा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया, और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था, और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे, वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है, और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियों और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिये तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है, जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, अब कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है, और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का
0: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को.
1: बिल्कुल.
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार.
1: अरे बहुत
0: है ना. और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ. और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में.
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं. तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके.
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती. और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी. तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है. इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना
1: अच्छा,
0: जाने लगा है.
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
0: नाम
1: भाई थे. और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे.
0: बिल्कुल सही कहा. और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं. और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है. बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
1: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत मुश्किल है.
1: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है. ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं. तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं.

0: और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या दो रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
0: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ, बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है, तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं। और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं, या विवाह समारोह के अवसर हैं, या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए।
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हम सब शामिल करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दी
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भाव

0: और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
1: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं,
0: जी
1: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
0: भाषा क्या है?
1: तो
0: सच
1: भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या
0: बिल्कुल
1: दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
0: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं, इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है इसे हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
1: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें
0: बिल्कुल।
1: डर होता है कि अरे भाई
0: और कोई आसान तरीका भी हो
1: हमें
0: उसका?
1: मिल जाए। तो
0: जी
1: आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भी भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं।
0: जी
1: तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों है
0: जी
1: ना। देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान हैं।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका
1: बिल्कुल,
0: में रहने वाला हो, चाहे वो
1: हाँ
0: हिंदुस्तान में रहने वाला
1: बिल्कुल,
0: हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हों, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हुए
1: जुड़े
0: हैं।
1: हैं। बहुत गहरी बात है आरती ये, अगर हम इसे समझ पाए तो
0: जी
1: कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो वो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल। जो वो भाषा जानते थे उसमें
1: हाँ
0: समझते समझ आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को हम
1: हाँ
0: जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और
0: जी
1: हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा,
0: जी
1: है ना।
0: अक्सर
1: हम
0: लोगों का।
1: मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे,
0: जी
1: लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की
0: बिल्कुल
1: शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी
1: हाँ
0: सीखिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल। आपने
0: तो
1: देखा होगा
0: सीखना कभी
1: कई
0: मत
1: लोग
0: बंद
1: शौक
0: करिए।
1: या फ्रेंच भाषा सीखते हैं,
0: हाँ
1: उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हो, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में
0: बिल्कुल
1: होने लगा है,
0: जी
1: जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने इतने साल के हो गए, अब हम क्या सीखेंगे।
1: हाँ,
0: ये कभी मत मन में लेकर
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहत आपके अंदर होनी

0: चाहिए।
1: जी, और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित, जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: क्या
1: है।
0: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना,
1: जी
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है।
1: जी
0: डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी
1: बिल्कुल
0: नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप
0: हाँ,
1: खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव
1: जी
0: आता है वो कितना सुंदर होता है ना,
1: बिल्कुल
0: ये सबसे
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती,
1: जी
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या
1: जी
0: लिखती हैं
1: सबका नजरिया
0: ये
1: अलग होता
0: मायना
1: है।
0: रखता
1: जी
0: है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से,
0: हाँ
1: जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में
0: हाँ
1: क्योंकि
0: कितना अच्छा
1: हाँ
0: लगा
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना, तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहा है,
0: हाँ, तो
1: तो
0: वो
1: इस वजह
0: अपने
1: से
0: करीब पाते हैं ना आपको
1: बिल्कुल
0: कि ये हमारे ही लोग हैं, और भाषा एक दूसरे को जोड़ती
1: बिल्कुल
0: है
1: जोड़ती
0: ना।
1: है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है, तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी
1: जी
0: मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल
0: लेकिन शौक रखना चाहिए
1: बिल्कुल, अपने
0: कि
1: मन से सीखिए,
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से, नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें किस
0: आपकी
1: तरह से बोल रहा
0: वोकेबुलरी
1: हूं मैं।
0: बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता
1: बिल्कुल
0: है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम
1: जी
0: रखते हैं, किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं
1: बिल्कुल
0: और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषाएं बोल
0: हाँ, हम
1: लेते
0: चौंक
1: हैं।
0: जाते हैं
1: जी
0: और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़
1: बिल्कुल
0: जाता है,
1: बिल्कुल बढ़ जाता
0: देखने
1: है
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब
1: जी
0: हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो
1: बिल्कुल
0: भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और
1: जी
0: इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है
1: जी
0: ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ,
1: जी
0: कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है,
1: जी
0: लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

के घटा लाई क्या छुपा के घटा लाई क्या छुपा के बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात ये तो बतला।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पर एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखते हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ,
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना। आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल
1: उसका
0: के आप
1: उछल
0: पर
1: कर आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और
1: सामने
0: ये बहुत
1: आते
0: खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी हम कहें ना श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: वो जो उनके अंदर चीजें है ना, वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी
1: बिल्कुल। और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को

0: प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा भाषा
1: विदेशी भाषा है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
1: चलिए आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर
0: भाषा का भी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना,
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो। जी
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण

0: व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहां सद्भावना होती है वहां रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है। और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं?
0: अब मूल्यवान तो ये गीत है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल,
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकुआ और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे
0: मिल जाएगी। तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है।

0: वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं, मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
0: अच्छा।
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था
0: जी।
1: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
0: जी, जी।
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
0: जी,
1: वो एक अलग अनुभव था
0: जी।
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ
0: हाँ।
1: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो घूमने जाओ तो अलग बात है
0: जी।
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए तो वो कठिन दौर था, लेकिन गुजरा। और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब भी देखा मैंने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पर रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
0: बिल्कुल
1: यस। तो ये सब भी
0: उदय शंकर जी का
1: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
0: जी।
1: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते कैसे।
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं कि जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: पहाड़ों में
1: पहाड़ों में कैसे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये सपनों की नगरी थी।

0: जी
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, तो एक
0: जी
1: अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में टॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है उस
0: हाँ
1: पर वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम,
0: बिल्कुल।
1: है
0: और तब तो
1: ना।
0: लंबी लाइनें
1: हाँ,
0: हुआ
1: वो लंबी
0: करती
1: लाइन
0: थी।
1: हुआ करती थी। तो टीजीएस कॉलोनी जो टॉप हिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, टॉप हिल से किंग सर्कल आना वहाँ से पैदल,
0: जी
1: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
0: हाँ,
1: में।
0: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
1: हाँ,
0: ढाल लेता
1: तो फिर
0: है।
1: वो लोग अपने आप वो आपको उतार देते
0: जी
1: हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
0: जी
1: उतार देंगे लोग,
0: लोग उतार
1: तो ये
0: देंगे।
1: उतार, तो
0: जी
1: ये
0: तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
1: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
0: चरम
1: पर
0: पर
1: थी,
0: थी।
1: चरम
0: जी
1: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
0: जी
1: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे मोहल्लों में, मतलब चलते थे शादियों फंक्शनों में भी, ये उस वक्त ये
0: बजाया करते थे
1: बजाया
0: उसको।
1: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो और
0: बिल्कुल
1: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
0: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
1: बहुत प्यार रहा,
0: बल्कि
1: बहुत
0: हमने उनको
1: प्यार।
0: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
1: जी,
0: तब मैं था
1: चल
0: नहीं शहर में।
1: चल। हाँ, तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
0: जी
1: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
0: जी
1: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी,
0: क्या
1: हाँ ना।
0: बात है,
1: तो वो
0: क्या
1: किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
0: पेडर रोड।
1: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
0: जी
1: मैं गया, और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
0: जी
1: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह, उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
0: जी
1: रोज रियाज करना उनका काम था जब बॉम्बे में होते थे।
0: जी
1: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ है, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे, फिर रियाज पे। तो ये
0: जी
1: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे, और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
0: जी
1: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहले ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ,
0: वाह
1: वरना
0: वाह
1: अक्सर होता है
0: वाह,
1: कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ,
0: जी जी
1: है ना।
0: जी जी
1: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
0: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
1: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब
0: जो
1: है,
0: जिंदगी की किताब है। वाह
1: हाँ,
0: वाह वाह
1: तो ये वो
0: वाह।
1: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
0: और भूपी जी ने क्या गाया था?
1: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब, ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
0: अच्छा
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
0: हाँ हाँ
1: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और
0: जी
1: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं, वो
0: अच्छा,
1: गजल शराब पड़ती। तो वो
0: ओ
1: गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
0: जी, ये जो जिंदगी की

0: किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और
1: जी
0: ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो
1: हाँ
0: जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
1: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
0: जी
1: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
0: वही
1: उसको,
0: अब
1: हाँ, वो पढ़ देता हूँ एक।
0: जरूर जरूर।
1: ये जो जिंदगी की कि

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ ऐसे कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी, उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील
1: नबील,
0: था
1: नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: दो
0: में
1: घंटा
0: गाया।
1: रहा, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो वो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त

0: नहीं ये बात
1: ये
0: कही
1: मेरे
0: है।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना?
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ हाँ हाँ
1: सीरियल
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल, बड़ा
1: और
0: नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज उदास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरूह सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया, हाँ ये तो सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ फिर एक बार। फिर उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मंजूर साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये? तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरूह
0: मजरूह जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की
1: है
0: बात
1: ना?
0: है।
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे
0: बिल्कुल
1: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है।
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर।
0: जी
1: आज तो वो दौर नहीं है,
0: जी
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद, और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
0: सदर
1: रहे थे,
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजीत एक्टर,
0: जी
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
0: अलग ही
1: के
0: होता था
1: अलग ही हुआ करता था,
0: जी।
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप
1: तो
0: रे।
1: शुरुआत के एक दो इशारों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुला कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है
0: जी
1: ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा या प्यार हुआ ना तो मुशायरा तो हो गया, मतलब
0: अरे अब तो
1: ये
0: शुरुआत कर रहे थे जबकि
1: हाँ
0: जी।
1: मुशायरा तो हो गया,
0: अरे
1: मतलब
0: बाप रे, बहुत बड़ी बात है
1: ये बड़ी बात थी। तो
0: जी
1: ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
0: जी
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे

0: हैदराबाद बुलाया
1: गजब
0: अपने घर पर,
1: जी।
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
1: जी
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
1: हाँ
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया। उनका
1: हाँ
0: आखिरी एल्बम था ये,
1: ओहो
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
1: चले
0: दुनिया
1: गए
0: में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: चले गए।
1: जी
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे।
1: जी
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे।
1: बिल्कुल
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका इसका वो करें। हाँ, तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया।

0: हाँ, तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो? मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी।
0: तो किताब लेके वो रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: वो कर दिया,
1: खोला
0: रिबन खोला ऑडियंस के सामने, ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा
0: हॉल
1: हुआ
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: है। अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गज़ल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गज़ल, तो सारे तो वो गज़ल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं ख़त्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी। हो
1: जी
0: ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके

0: दौर था हर तरह से,
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
1: सब
0: से,
1: चीजों को
0: हाँ
1: संभालते
0: सब कुछ संभालते थे।
1: थे
0: तो एक अच्छी टीम थी
1: जी
0: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया,
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे
0: है।
1: जी।
0: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा है और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है जिसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ
0: कहीं,
1: रहे,
0: हाँ
1: खयाम साहब आ
0: हाँ
1: रहे
0: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत कहले, प्यारेलाल जी आए,
1: जी,
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
1: बिल्कुल,
0: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना,
1: आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: खयाम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो
0: हाँ
1: रहा है।
0: हाँ तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान,
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं
0: हाँ
1: और वहीं 1 घंटे बात हो
0: हाँ उनको
1: रही
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था,
1: जी
0: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
1: बिल्कुल
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया न करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा
0: उनके
1: कर
0: ले
1: सकते
0: सकते हैं
1: थे
0: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग
1: जी
0: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल,
0: में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं
0: किसी के पास नहीं है, वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
1: जी
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़ के
0: है
1: एक हैं
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन
0: हाँ,
1: देना
0: नहीं क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
1: जी
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी
0: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
1: जी
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे, उजाले,
1: उनकी
0: उनकी
1: यादों के
0: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
1: सखी
0: सहेली आपके
1: सहेली।
0: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्ण

0: एक जरूरी बात रह गई है, और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं,
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे।

0: जापान पे हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
1: जी
0: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
1: जी
0: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
1: जी
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
1: ओके
0: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, अब मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
1: जी
0: वो सब
1: जी
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
1: अरे वाह
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
1: अरे
0: घर चला आया,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
1: हाँ
0: कि हम मैंने शादी कर ली है,
1: हाँ
0: और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं
0: मुमकिन ही
1: सकता
0: होंगी
1: था।
0: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
1: हाँ
0: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
1: हाँ
0: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
1: हाँ
0: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
1: अरे बाप रे
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
1: गजब
0: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे,
1: हाँ
0: तो फिर हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ किया, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
1: हाँ
0: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे
1: हाँ
0: उसको, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये नहीं
1: है।
0: होने देंगे,
1: हाँ हाँ
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब
0: मैं भी चलूंगी। तो
1: बाप रे
0: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
1: और
0: तो मैंने कहा
1: ये
0: यहाँ, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ
0: सारा साहस इनका है,
1: क्या बात है
0: ये उस जमाने में।
1: जी शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ,
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगा
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: कितने
1: हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और 2 छोटी छोटी बहर के शेर,
1: इरशाद
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर
0: कोरे
1: गिरा
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या
0: एक
1: बात है
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, غم

0: छुपाना
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाए जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूँ अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी,
0: मतलब किसी
1: लाइन होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।

0: खुद को समेटते हैं यहां से वहां
1: क्या बात है,
0: से हम
1: क्या बात है, क्या बात है।

0: कहाँ से हम।
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या बात
0: यू
1: है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशिका। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान

0: പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഹിന്ദിയിലും തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും വാർത്തകൾ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സമാചാർ കെ സാത്ത് മേ സർ ഫിറോസി. भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए. इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया. एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है. दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं.
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है. यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं. भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए.
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है. इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया. उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान

भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये